0: है
1: लाइका रेडियो लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
0: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
0: In Dubai
2: Pepe's Piri Piri is turning up the heat Pepe's Piri Piri On Belgrave Road, Leicester With grills fired up And ready to serve your flame grilled Piri Piri favourites Pepe's Piri Piri Definitely worth a visit
3: Did you know you can advertise on this station Leica Radio Midlands Plus our other offerings Leica Radio Greater London Leica Gold Greater London And Leica Radio Greater Manchester As a combined network We can give you a competitive rate To spread your message to a wider audience Call 011-6471-0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Gearhead.
1: Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग।

0: This is Leica Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

मैं विसर ना जाए जे जु विचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा ना रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा सच।

आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, उगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अव

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीस, लख

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगति छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म

0: चलो ये भी वादा है, कह दू तुम्हें या चुप रहूं, दिस अमेजिंग ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड आशा भोसले फ्रॉम द सुपर हिट मूवी दीवार. आई मीन दिस इज वन मूवी जो आप कभी भी देख सकते हो एंड इट इज सुपर एंटरटेनिंग. क्या डायलॉग्स है, आई लव यू नो वो जो डायलॉग्स होते हैं बिटवीन शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन. वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स इज जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था. एंड यू नो आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? एंड देन शशि कपूर इन स्टाइल सेज मेरे पास माँ है. आ व्हाट लवली डायलॉग्स, क्या लिखे हैं जावेद साहब ने. आई मीन अमेजिंग मूवी. एंड इफ यू नॉट वॉच इट, आई एम श्योर हम सब ने देखी होगी, बट इफ यू नॉट वॉच इट डेफिनेटली डेफिनेटली वॉच इट.
1: ये है लाइका रेडियो.
2: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., like a gold and like a radium Midlands.

0: लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड मनोहर दास फ्रॉम द मूवी अभिमान अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन. व्हाट अ लवली मूवी. एक और प्यारा वाला गाना इस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: Pamar Kare Pukar. This Pyara Wala Gana in the vocals of Rafi Saab from the movie Tere Ghar Ke Saamne. What a beautiful song. Leica
1: Radio. Leicester, tiyar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F. Face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट भी गया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
5: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क. 7 स्टेशंस, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Deep Raja, waking you up every weekend.

0: इतना तो याद है मुझे, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी महबूब की मेहंदी.
1: Are you listening? Like a Radio is now available across Coventry on DAB.
0: ये लास्ट गाना दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ मेरे पास अभी भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं इन माय गानों का पिटारा. फॉर नाउ एंजॉय दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी दो रास्ते.

0: जब प्यार किया तो डरना क्या, दिस एवरग्रीन सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी, द सुपर हिट मूवी मुगले आजम. एंड ऑफ कोर्स दिस वाज पेन डाउन बाय आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदयानी. एंड शकील साहब एक्चुअली एक वेरी फेमस उर्दू पोएट, लिरिसिस्ट एंड सॉन्ग राइटर हैं. क्या लिरिक्स होती हैं इनकी, व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Another mast wala gana in the vocals of Shailendra Singh and Asha Bhosle from the hilarious movie Rafu Chakkar.

भूल गया सब कुछ, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी जूली. एंड इस गाने के बाद वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय, बट गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू रितु शर्मा. अप नेक्स्ट, लाइक अ रेडियो नेटवर्क.

0: और इस गाने में धर्मेंद्र बिल्कुल जट यमले पगले दीवाने ही लग रहे थे, और ये दीवानगी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में भी दिख रही थी जिन्होंने इस गाने को गाया है। और क्या म्यूजिक तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, एक सदाबहार गाना और उससे पहले आरडी बर्मन की आवाज। शोले फिल्म का गीत आपने सुना, और इन दो गीतों के साथ लीजिए एक बार फिर से आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। और मैं ऋतु शर्मा आप सभी को कहना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। सैटरडे का दिन है और लीजिए शो की शुरुआत हो गई है, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वैसे ही खूबसूरत हैं, वैसे ही प्यारे हैं, वैसे ही खुश हैं जैसे हमेशा इस शो को सुनकर होते हैं और मेरा साथ भी दे रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आप हमारा साथ देते रहिए, हम यूं ही गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए, मेरे आने से पहले उन पर भी मेरी नजर जाएगी, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको ब्रांच में जाकर ऑनलाइन या फिर उनके योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio. Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: तो भाई मैं जानती हूँ आप सबने रात में जागने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 10 बजे से आज इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में क्वार्टर फाइनल्स खेले जाने वाला है और सबकी नजरें उसी मैच पर टिकी हुई हैं। देखते हैं बैंकॉक जीतता है, लेकिन आपको बताते चलें कि आप अपना 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, और ये सब हो सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Laika Radio.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN. Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danu. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Lester Miller is back.
8: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
7: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
8: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
7: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
8: Arts Council England.

0: सा जीलो थोड़ा थोड़ा मर लो,
1: थोड़ा सा जीलो थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: भाई दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा नहीं खूब जीलो, और सिर्फ लव ही करो, नफरत नहीं करो। क्योंकि कल मैं हमारे राम शो देखने गई थी जो बहुत ही कमाल का था, और मैं जरूर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। लेकिन आशुतोष राणा ने भी एंड में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही थी जब वो लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे थे कि हम जिनसे नफरत करते हैं तो हम भी उनके जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में वो ही इंसान दिन भर घूमता रहता है। इसलिए उन्हें अपने मन से माफ कर दो, चाहे आप उनसे बात करो या ना करो, लेकिन अपने दिमाग से उनको निकाल दो, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर वक्त उनके बारे में सोचें। दुनिया में और भी बहुत अच्छी चीजें हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। तो इतनी खूबसूरत बातें कल मैंने उस शो में सुनी, मैं जरूर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। फिर कहती हूँ थोड़ी ही देर

London, like a radio in Greater Manchester and like a radio in Midlands. और आपको बता दें कि आप अगर 90s के 2000 के बहुत सारे गाने सुनना चाहते हैं तो हमारे like a radio से इस वीकेंड पर थ्रोबैक वीकेंड किया जा रहा है. तो सुन के देखिए, अगर आपको 2000 के और 90s के गीत पसंद है तो आप वहां भी जाकर उसे भी सुन सकते हैं. लेकिन फिलहाल बात करते हैं हमारे लिसनर्स की, जिन्होंने मुझे बहुत सारे प्यार के साथ ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं. थैंक यू मनीषा शाह, आप कल देखने जा रही हैं? ओहो, जरूर जाइए. मैं आपका बिल्कुल भी एक्साइटमेंट कम नहीं करूंगी. मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी शो के बारे में, लेकिन कुछ बातें बताऊंगी जो आपको वहां जाने के लिए और भी एक्साइट कर देंगी. तो आप जरूर देखकर आइए मनीषा शाह. जयंत एंड मीना जी हमारे साथ हैं सनी सैटरडे मॉर्निंग में, गर्मी का मजा लेते हुए शो का आनंद उठा रहे हैं. क्या बात है. स्लाव में सुरजीत हमारे साथ हैं, हैरो में दिव्या जी हैं, टोरंटो में हमारे साथ उल्लास हैं, अर्जुन जी हैं, रुदा जी हैं, हरीश रुदा हैं हमारे साथ, संध्या भावसर हैं, रोशनी है, एंड हमारे साथ है हमारे राजेश जी. थैंक यू कहते हैं आपको बहुत ही खुशहाल और मजेदार शनिवार की शुभकामनाएं. क्या बात है. थैंक यू क्रॉयडन से महेंद्र पटेल जी, थैंक यू बानी जी, आपने मुझे फालूदा का ग्लास भिजवा दिया है. क्या कर रही हैं, आपको कैसे पता कि फालूदा मेरा फेवरेट है. आइसक्रीम हो, फालूदा हो, मैंगो शेक हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ खा जाती हूँ. मुझे सब इतना पसंद है, मुझे मीठा इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ. तृप्ति आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मिसेस शेख हिमांशु पटेल जी, थैंक यू. प्रज्ञा कहती हैं कहाँ थी आप, जमाने के बाद आई हैं. सच में प्रज्ञा, एक हफ्ते के बाद आई हूँ ना, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं आप लोगों से कितने दिनों बाद मिल रही हूँ. ओहो, ऐसे गाना याद आ रहा है, लंबी जुदाई. ना मैं गाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है. तो थैंक यू हरीश खत्री जी, आंटी जी, सहर जी, अनिल सोनी जी, वियाना से तोची जी, मृदु जी, शेखर जी, एंड ऑफकोर्स हमारी मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबके मैसेजेस मिल गए हैं, और जब मिल ही गए हैं तो अगला गाना क्यों ना आप सबके नाम किया जाए. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: लता जी और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म से था ये गाना, जो विजेता पंडित और कुमार गौरव की फिल्म थी। और आपको बता दें कि कुमार गौरव, जिनका असली नाम मनोज तुली है, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और आज वो 70 इयर्स के हो गए हैं। यस, कुछ बहुत ही अच्छी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और उनके पापा ने ये फिल्म उन्हें लॉन्च करने के लिए बनाई थी। और हाँ, एक और बात बता दूं, उनके पापा कौन है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, क्योंकि आज हम यादें में उन्हीं को याद करने वाले हैं। तो जरा बताइए कि कुमार गौरव के फादर का नाम क्या है, उनके बारे में होंगी बातें आज की यादें में प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Laika Radio.
3: Across the Laika Radio Network, this is Ritu Sharma.
0: जी हाँ, बिल्कुल, आप लाइव शो ही सुन रहे हैं मेरे ऋतु शर्मा के साथ और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। तो कुमार गौरव को हैप्पी बर्थडे कहते हुए आपको भी हैप्पी बर्थडे कह देते हैं अगर आज आपका जन्मदिन है, और अगला गीत आपको डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले सुनील कपूर जी, आपने पोहे की फोटो भेजी है और कह रहे हैं खाइए। अरे भाई, पोहा थोड़ी नहीं भेजा है, कैसे खा लूं? फोटो भेजिए तो लिखिए देखिए, मैं देख रही हूं और बहुत मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, आप खाइए मजे के साथ और हमारे शो में बजने वाले गीतों को एंजॉय कीजिए। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगी कि कल मैं बहुत लकी रही, मुझे हमारे राम देखने का मौका मिला और मैं यही कहूंगी कि व्हाट एन अमेजिंग शो, हर चीज इतनी खूबसूरती से दिखाई है, हर एक्टर ने अपने किरदार में ऐसी जान डाली है कि आप उसमें खो जाते हैं। स्टेज पर क्या जादू क्रिएट किया है, स्क्रीन से, लाइट से, अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने भाव भाव से इतनी खूबसूरती से सब दिखाया है। चाहे वो राम हो जो राहुल भुच्चर बने हैं, चाहे वो महादेव हो जो तरुण खन्ना बने हैं, या फिर हो रावण जो है आशुतोष राणा, हर कैरेक्टर को देखकर मुझे इतना मजा आया। हाँ, कुछ लोगों को शायद भाषा समझने की प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि वो हिंदी भाषा में है, लेकिन रामायण की कथा तो हम सब जानते ही हैं और अगर एक दो शब्द नहीं भी समझ में आए तो कोई मुश्किल मुझे नहीं लगती होती है, क्योंकि आप उसको जब देखते हैं सामने आंखों से तो वो सब कुछ आप फील करते हैं, समझ जाते हैं कि वो किरदार क्या कहना चाह रहे हैं। एक अनोखा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत सारे शो देखे हैं लेकिन ये कहूंगी कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और कभी कभार जब वो लोग डायलॉग्स बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, मैं उसमें खो गई थी और बहुत अच्छा लगा। किरदार जो थे वो सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो आप सबके बीच में खड़े होकर परफॉर्म कर रहे थे, ये भी बहुत अमेजिंग बात थी। तो जो लोग गए होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि जब आपके पास में से राम निकलते हैं, जब आपके बीच में से हनुमान निकलते हैं तो कैसा लगता है। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और जो नहीं गए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं, तो मैं कहूंगी जरूर जाइए, ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। नहीं जाएंगे तो पछताएंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ जाके, मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा भी देख सकती हूँ। सो आई रियली एंजॉयड इट। और बस यही कहूंगी कि उनके लिए मेरी ओर से ढेर सारी तालियां, क्योंकि मैं कुछ और दे नहीं सकती। सो इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग शो, और जो कल जा रहे हैं यकीन मानिए आपको भी बहुत मजा आने वाला है।
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले हमको बता दें कि आप हमारे राम तो देखने जा रहे हैं, लेकिन अगर घूमने जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी डील्स लेकर आए हैं साउथहॉल ट्रैवल दुबई के लिए। आप उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, ये सब है टॉल प्रोटेक्टेड है, और अपने टिकट्स बुक कीजिए।

0: योगेंद्र जैन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्या संगीत है, क्या लता जी की आवाज है, क्या गाना है। प्रेम रोग फिल्म से लिया था ये गाना, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू गिरी जी, भारत में आप हैं, पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबसे मिलने के बाद मैं और अच्छी हो जाती हूँ। और बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आप राजेंद्र कुमार के बारे में बात कर रही हैं। जी कोकिला पटेल जी बिल्कुल, हरीश खत्री जी बिल्कुल, राजकुमार जी, संतोष जी, तृप्ति जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार के बारे में, जिन्हें हम याद करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले एक मैसेज जरूर पढ़ूंगी। राजेश जी कहते हैं कि राम के शो पर आपके अनुभव और आनंद पर आपके ईमानदार विचारों की सराहना की जाती है। तो मैंने बिल्कुल ईमानदारी से बताया है, जो फील किया है मैं वही बता रही हूँ, और मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। आपको बता दूं, मैं कुमार विश्वास की राम कथा भी बहुत सुनती हूँ। आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है सुनकर, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, इतने गम हैं और स्ट्रेस है, इतने लोग आपको कई बार परेशान करते हैं, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और हम उन परेशानियों में खो जाते हैं। लेकिन जब मैं ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि क्या फालतू की चीज़ में मैं अपना दिमाग ख़राब कर रही थी, भाड़ में जान दो, इसके बारे में सोचना ही नहीं। इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया है और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं सोचने के लिए, इन सब के बारे में सोच के अपना जीवन क्यों व्यर्थ में वेस्ट करना। और ये सब समझ तभी आता है जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ। तो कल भी मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगता है ये सब सुनकर। तो अगर आपको भी इस तरह का चीज़ें पसंद है तो हमारे राम देखने ज़रूर जाइए। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बताऊँ तो सारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, आपको गाने भी तो सुनवाने हैं ना।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Like a radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: So gold rate is 98.8 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Are you listening? LIKA Radio is now available across Derbyshire on DAB.
3: ये है
4: LIKA Radio.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
6: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, LIKA Radio.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट।
8: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
9: के सामने एक रेड बटन है,
10: दबा दिया।
3: दबाया
4: नहीं दबाना
9: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
9: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
9: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमास नाउ
12: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Hero kadi wapas nahi aaye.
16: Did you hear that?
17: 1995 mein Punjab, jahan ek taraf khuli SWAT militancy hatane mein lagi hui thi.
16: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
18: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ कहाँ है जसवंत सिंह
16: सतलुज on Hindi Z5
19: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जसी
20: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
21: Lester Miller is back.
22: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
21: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes, and a massive live performance.
22: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
21: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
22: Arts Council England.
23: The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Laika Radio.

0: क्या गाना है रफी साहब की आवाज में, धरती फिल्म से पिक्चराइज ऑन राजेंद्र कुमार, और उससे पहले किशोर दा की आवाज में आप आए बाहर आई। और आई थिंक ये एक ऐसा इकलौता गाना था किशोर दा की आवाज में जो राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। और आज की यादें में हम राजेंद्र कुमार को ही याद कर रहे हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था उस जमाने में। और वो इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में लगातार ब्लॉकबस्टर होती थी। 60s के दौर में उनका सिक्का ऐसा चलता था कि थिएटर्स में उनकी फिल्में हफ्तों महीनों नहीं बल्कि सालों चला करती थी। एक बार लग जाए तो फिल्म उतरने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे हीरो रहे हैं राजेंद्र कुमार, और इसलिए इनके हिस्से में बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें बहुत खूबसूरत गाने हैं। तो आज कुछ गाने मैंने चुने हैं जिन्हें मैं आज आपको सुनवाऊंगी, लेकिन कुछ बातें जरूर उनके बारे में बताऊंगी कि राजेंद्र कुमार के दिल में बचपन से ही सपना था कि वो एक एक्टर बने। हालांकि घर पे फादर का बिजनेस था, लेकिन उसे छोड़कर 50 रुपए लेकर मुंबई भाग आए और उन्हें पहला ब्रेक दिया के आसिफ ने। उनके साथ उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। जोगन फिल्म में दिलीप कुमार के साथ इन्हें छोटा सा रोल भी मिला और इस रोल को करके राजेंद्र कुमार को जैसे चस्का लग गया। पहले तो वो डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन जब वो छोटा सा रोल किया तो राजेंद्र कुमार को बहुत मजा आया और उन्हें लगा कि अब तो शायद मैं हीरो ही बनूंगा। और उसके बाद उनकी फिल्म आई मदर इंडिया। मदर इंडिया में नरगिस के बेटे रामू का जो उन्होंने किरदार निभाया, रातों रात उन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, रातों रात स्टार बना दिया, खूब पहचान मिली। और उसके बाद तो एक के बाद एक इनकी बहुत सारी फिल्में आईं जो सुपरहिट होती गईं। कई फिल्में हैं, लेकिन जिनमें से एक फिल्म है दिल एक मंदिर, जो आप सबके दिल के बहुत करीब है। अगला गीत उसी फिल्म से आपको सुनवाने वाली हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज £1 के बदले में आपको मिल जाएंगे 127.2 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ई ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो चलिए आपको एक बार याद दिला दें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में क्वार्टर फाइनल्स का मैच है जो रात को 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही आपको 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकती है विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

दिल एक मंदिर फिल्म से था ये गाना, शंकर जय किशन का म्यूजिक, राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार की फिल्म। और इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। और ये फिल्म 1963 में आई थी, और 60s का दौर राजेंद्र कुमार के जीवन का ऐसा दौर था कि उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती जा रही थी। और 60s में ही एक समय ऐसा आया जब एक साथ राजेंद्र कुमार की 6 से 7 फिल्में चल रही थी और सभी फिल्में 25 हफ्ते का आंकड़ा पार कर चुकी थी, यानी कि सिल्वर जुबली हिट हो चुकी थी। और इसीलिए जहां भी देखो सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कुमार की फिल्मों के पोस्टर्स ही नजर आते थे, और इसीलिए उन्हें जुबली कुमार का नाम दिया गया। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है सुनवाने वाली हूँ, क्योंकि आज हम यादें में राजेंद्र कुमार को ही तो याद कर रहे हैं।

0: जमाने की सुपरहिट फिल्म सूरज से लिया था ये गाना जो 1966 में आई थी, शंकर जयकिशन का शानदार म्यूजिक एंड राजेंद्र कुमार वैजयंती माला की फिल्म। राजेंद्र कुमार की लाइफ के बहुत सारे किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक उनके बंगले वाला किस्सा जिसके बारे में हर कोई बात करता है कि जब राजेंद्र कुमार अपने शुरुआती स्टारडम के दिनों में उन्होंने बांद्रा पर समंदर के सामने एक भूतिया माना जाने वाला बंगला खरीदा था और उन्होंने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर डिंपल रखा था, और इस घर में कदम रखते साथ ही उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो जुबली कुमार बन गए। लेकिन बाद में जब राजेंद्र कुमार का दौर धीमा पड़ा, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और उस समय उन्होंने उस बंगले को बेचने का फैसला किया, तो उस समय के उभरते हुए कलाकार जो उस समय तक सुपरस्टार नहीं बने थे, राजेश खन्ना, उन्होंने उस बंगले को खरीदा, उसका नाम बदलकर उन्होंने डिंपल से आशीर्वाद किया, और इस बंगले में शिफ्ट होते ही राजेश खन्ना ने लगातार 15 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी और वो देश के पहले सुपरस्टार बन गए। अब क्या कहते हैं आप, ये कमाल इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग का था या फिर उस भूतिए बंगले का?
1: दिस इज रितु शर्मा। Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Leica Extra podcast update.
0: तो याद दिला दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ गया है, पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है ईस्ट अफ्रीकन एशियंस। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं सभी लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है Spotify, YouTube, Amazon, जहां भी आपको सुविधा हो वहां जाकर सुनिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
3: Radio partner Leica Radio.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
7: Safo Travel, at all protected. Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
4: Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio Partners. Like a Radio Network. None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: ये नन्हा सा दिल माला सिन्हा का था, जिसमें साथ में थे राजेंद्र कुमार और ये थी फिल्म धूल का फूल, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी राजेंद्र कुमार की, और आज हम उन्हें ही यादें में याद कर रहे हैं। अपने जमाने की सारी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस के साथ राजेंद्र कुमार ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्म्स दी हैं, क्योंकि खुद ही एक बहुत बड़े हीरो थे। लेकिन जानते हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर और राजेंद्र कुमार एक बहुत गहरे और पक्के दोस्त थे। आपने सुना होगा वो किस्सा कि जब राजेंद्र कुमार और राज कपूर दोनों एक साथ नजर आए थे फिल्म संगम में। दरअसल जब राज कपूर ने संगम फिल्म बनाने के बारे में सोचा तो मेन लीड रोल में तो उन्होंने खुद को लिया, और सेकंड लीड के लिए वो दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि सेकंड लीड भी कोई बहुत बड़ा हीरो करे, लेकिन दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो सेकंड लीड था। और उन्होंने दो चार हीरो से और पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। और राज कपूर राजेंद्र कुमार से नहीं पूछना चाहते थे क्योंकि राजेंद्र कुमार उस समय टॉप में चल रहे थे। लेकिन जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि उनका दोस्त कुछ परेशान है, उन्होंने उससे पूछा क्या बात है। राज कपूर कहते हैं अरे रहने दे, बोले नहीं कहो तो क्या बात है। और जब उन्होंने अपनी दुविधा राजेंद्र कुमार को बताई तो वो बोले बस इतनी सी बात, मैं करूंगा तेरी फिल्म में। राज कपूर दंग रह गए, बोले इतना बड़ा हीरो मेरी फिल्म में सेकंड लीड करेगा। राजेंद्र कुमार बोले तो क्या हुआ, दोस्त के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। और उन्होंने इस फिल्म में सेकंड लीड रोल निभाया, जिसमें एंड में उनकी डेथ भी हो जाती है और हीरोइन हीरो के साथ चली जाती है। लेकिन इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के उस रोल को इतना पसंद किया गया, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, सारे रिकॉर्ड टूट गए। और इस फिल्म के बाद राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई। और बाद में राज कपूर ने अपनी बेटी रीमा की शादी उनके बेटे कुमार गौरव से भी तय की थी, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन ये दोस्ती आज भी फिल्मी गलियारों में, बॉलीवुड के किस्सों में, कहानियों में हमेशा याद की जाती है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 98.82 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
4: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybound Travel on 01162 167225. We're at all
6: आपके सामने एक रेड बटन है,
7: दबा दिया।
6: नहीं दबाना था।
7: The madness is back, धमाल 4।
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
7: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
7: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
10: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता।
11: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday, the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
12: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
13: Lester Miller is back.
14: And the stage is about to explode. Confirmed artist
13: H. Dami. Bringing the hits, the energy, and those proper live stage vibes.
14: Hosted by the team of Lyca Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
13: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
14: Arts Council England.
13: The voice that defined a complete era. Ah, the songs that touched millions. She's coming to London soon.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HeartyHanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HeartyHanks.com now.
1: The Ritu Sharma Show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Lyca Radio.

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में था ये गाना, और आज हमने राजेंद्र कुमार को याद किया यादें में। आज कुछ अलग गाने सुनवाए मैंने आपको, आई एम श्योर आपने पसंद किए होंगे। और राजेंद्र कुमार एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्हें उनके योगदान के लिए 1969 में भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें कई बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, कई बार उन्हें अवार्ड भी मिले, लेकिन वो आखिर में दुनिया से चले गए, कैंसर से पीड़ित रहे। और 12 जुलाई जो कल है 99 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन बहुत ही कमाल के एक्टर रहे हैं, कमाल की फिल्में हैं, कमाल के गाने हैं। ऐसा ही एक और गीत जो होगा आज की यादें का आखिरी गाना।

0: लीजिए अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में था ये गाना फिल्म चालबाज से, और उससे पहले आपने लता जी के साथ सुनी अमित कुमार की आवाज। फिल्म का नाम रोमांस, जिसमें कुमार गौरव और पूनम ढिल्लन ने काम किया था। और एक बार फिर से याद दिला दे कि आज कुमार गौरव अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ अगर आज आपकी भी बर्थडे है तो आपको भी हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। और लीजिए प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है, और इस आवर में आप मेरे साथ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनते हैं और हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम भी। तो चलिए तैयार हैं थ्री वर्ड्स गेम जानने के लिए, लेकिन उससे पहले जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और आपको आज की यादों के गाने भी पसंद आए, सो थैंक यू। एंड अंजलि कहती हैं कि ये गाना जो आपने बजाया ना, मांग लूंगा मैं तुझे, आपको पसंद है, चलिए मैं इसको आपको डेडिकेट कर देती हूँ। एंड शेखर जी, जुबली कुमार के गीत आपने इंजॉय किए, थैंक यू। रियाना से अनिल सोनी जी, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू। और हरीश खत्री जी, हाँ, आइस लॉली आप भेज रहे हैं, यस मौसम है ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम और मिल्क जूस पीने का, सो थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू गिरीश जी भारत से, संध्या भावसर, थैंक यू शोभना राय, सपना परेश जी, थैंक यू मालती जी, थैंक यू सुनील कपूर जी, विजय गुनोवा जी, राजीव पटेल जी, और हमारे जितने भी साथी हमेशा साथ देते हैं आज भी जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू। बिल्कुल आप सब तैयार हैं, आपके मैसेजेस बता रहे हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। तो हमेशा की तरह जो नहीं जानते उनको बता दूं कि बॉलीवुड के किसी एक गाने से जो शुरू की तीन चार लाइनें होती हैं वहां से मैं तीन वर्ड्स लेती हूं, और आपको बताना होता है, पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है दिलदार, दूसरा वर्ड है तैयार, और तीसरा वर्ड है पार। कौन सा है ये गाना, सोचिए। दिलदार, तैयार, पार, लता जी की आवाज है, 1972 में आई थी ये फिल्म और नौशाद का म्यूजिक है। देखें तो सही आप इस गीत को पहचान पाते हैं या नहीं, और अगर आप पहचान पाते हैं तो बस देर किसी बात की नहीं है, आप हमें अपना मैसेज भिजवाइए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
0: तो इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी है, तो सोचा क्यों ना अगले गाने से ही ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। सुनवाती हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, जिसे लिखा है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी ने।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Lela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long 299 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Cell, Leicester, LE54UN.
4: भरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख करोड़ इन एंड एज सरपंच।
5: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
4: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च। Lester Miller is back.
3: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
4: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H-Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
3: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
6: Janan. The Janan and J-Dot Summer Sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot Summer Sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601. Or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: रजा।
1: क्या गाना गाया है आशा जी ने और क्या लिखा है शकील बधायुनी ने, जो है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना भी, जिसे आप सबने पसंद भी किया है और आपके ढेरों मैसेजेस भी मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि हमारा थ्री वर्ड गेम भी चल रहा है। ये है Like a Radio। तो जिन साथियों ने सही आंसर्स दिए हैं उनके नाम मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल सुनवाऊंगी आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley।
3: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net।

0: शम्मी कपूर की फिल्म, कल्याण जी, आनंद जी का म्यूजिक और मुकेश जी की आवाज, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम की, जिसको बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया है और कुछ साथियों ने जवाब सही नहीं भी दिया है, लेकिन ज्यादातर के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है नरेन पटेल जी आपका, संध्या भावसर, रेणु जी, गीता हर्षद जोशी, मनीषा शाह, रुखसाना अफजल फ्रॉम मैनचेस्टर, दिव्या जी हैरो से, अर्जुन जी, अमृता, भरत गंगोराम जी सहर, राजीव पटेल, करसिन पिंडोरिया, दिनेश पोपट जी, नीलेश तन्ना, अनिल सोनी, तोशी अमृता, अयूब चौहान जी, तोची पनेशर, उल्लास एंड कुकी। आई एम श्योर मैंने सबके नाम लिए हैं, लेकिन अगर किसी का छूट जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं फिर से चेक कर लूंगी। और अब थोड़ी ही देर में सुनवाती हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही प्यारा सा गाना आशा जी और रफी साहब की आवाज में।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ये भी राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की फिल्म गंवार से लिया था गाना। और ऐसे और भी बहुत सारे गाने हैं जो राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज किए गए हैं। आज यादें में हमने उन्हें याद किया। गाने तो मैंने बहुत सारे सोचे थे लेकिन समय ही नहीं मिला उन्हें प्ले करने का। लेकिन ये गीत आप सबने पसंद किया है, थैंक यू। और थ्री वर्स गेम वाला गाना भी बहुत सारे लोगों ने सही बताया है। हाजरा जी आपका आंसर भी सही है और कहती हैं नौशाद नहीं है उसके म्यूजिक डायरेक्टर। तो भाई नौशाद जी भी हैं और एक और है, अगर दोनों नाम बता देती तो आपको समझ में नहीं आ जाता कि गाना कौन सा है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या होता है ना, इसलिए मैंने एक ही बताया है। लेकिन आप सबने सही पहचाना है। आज के सवाल वाला गाना हमने फिल्म पाकीज़ा से लिया है जो मीना कुमारी और राजकुमार की एक जानी मानी फिल्म है। और बस देर किस बात की, उस गीत को सुनवाने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि अगर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो दुबई जाइए, साउथ ऑल ट्रेवल के पास बहुत अच्छी डील्स है। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, अपनी टिकट्स बुक कराइए, सभी कुछ इट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।

0: चांद के पार।
1: जी हाँ रमीला जी, आपने भी हमें गाना बिल्कुल सही पहचान कर बताया है। ये आप सबकी फेवरेट पाकीज़ा फिल्म से लिया था गाना। आज का सवाल बहुत ही आसान था, तभी तो ज्यादातर साथियों ने बिल्कुल सही सही जवाब दे डाला।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: तो अब हमारा और आपका साथ काफी कम बचा है, लेकिन अभी तो मैं एक दो गाने और सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ साथी कह रहे हैं कि ऋतु हम भी शो देखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए, देखने जरूर जाइए, क्योंकि आज दो शो थे, एक शायद हो गया होगा या चल रहा होगा, और एक आज शाम को है, और कल भी दो शो है, और उसके बाद सब खत्म। और बस मैं यही कहूंगी कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको मजा आएगा, क्योंकि हर किरदार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, चाहे वो शूरपनखा हो, चाहे लक्ष्मण हो, जामवंत हो, गीधराज हो, सीता जी हो, हनुमान जी हो, मंदोदरी रंभा, श्री राम या फिर महादेव, कमाल का काम सभी ने निभाया है। और इतने बड़े बड़े डायलॉग्स कैसे बोले हैं। देखिए लाइव शो में तो रीटेक्स भी नहीं होते, जब आप थिएटर देखते हैं तो बिना रुके टुके बिना अटके खूबसूरती से काम करना कमाल की बात होती है। और एक और चीज बताना चाहूंगी, मैंने रियलाइज किया कि हमने हमेशा रावण को जोर जोर से दहाड़ मारते हुए, गुस्साते हुए, चिल्लाते हुए देखा है, लेकिन इसमें आशुतोष राणा ने हमें रावण का हंसी मजाक वाला हिस्सा दिखाया है। थोड़ा फन है, थोड़ी मस्ती है, एंटरटेनमेंट भी है, हंसी मजाक भी है, और नाराजगी तो जरा भी नहीं है। तो जो जिन्होंने टिकट्स बुक कराए हैं, आपको जरूर मजा आएगा, देख कर आइए। कल बात करते हैं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, मुझे कल वहाँ हमारे बहुत सारे लिसनर्स से भी मिलने का मौका मिला, तो हमेशा ही जब आपसे मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लिसनर्स से बात नहीं हो पाई तो वो दूर से ही कह रहे थे, हाय ऋतु, वी लव योर शो। तो ये लाइन सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू आपके इतने सारे प्यार के लिए। अब बस इतना प्यार दे ही दिया है तो क्या करूं, एक गाना और सुनवा दूं। चलिए फिर हो जाए।
3: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Radio.
3: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: So Gold Rate is 98.8 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
3: This is Leica Radio.

0: वैसे मेरी आंखें देखकर भी आप यही कहेंगे कि तू कल रात को सोई नहीं, क्योंकि मैं कल रात बहुत देर घर में पहुंची थी शो खत्म होने के बाद, तो मेरी भी आंखें लाल हैं और अब मैं घर जाकर चैन से सोने वाली हूँ ताकि कल आपसे फिर से मिल सकूं। लेकिन अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार अनुराग आपके साथ होंगे गोल पर, नीरज आपके साथ होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर, एंड हमारी फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपके साथ। लेकिन आपको बता दें कि लाइका रेडियो लंदन पर थ्रोबैक वीकेंड चल रहा है, जहां पर क्लासिक्स आपको सुनवाए जा रहे हैं। और अगर आप 90s, 2000, 70s के गाने पसंद करते हैं तो आप लाइका रेडियो भी सुन सकते हैं। तो जो मर्जी सुनिए।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो, वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
0: मेरी ओर से आप सबको बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
6: Hero kadi wapas nahi aaye.
7: Did you hear that?
8: 1995, Punjab. जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
9: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
10: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
9: सतलुज ऑन हिंदी Z5।
11: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी।
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
13: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
14: The madness is back. Dhamal 4.
15: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
14: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
16: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
14: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
17: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: आपके सामने एक रेड बटन है.
2: दबा दिया.
1: नहीं दबाना था.
3: The madness is back. धमाल 4.
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
3: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता.
7: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
8: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
10: ये है लाइका गोल्ड 2.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: The Janan and J.Dot Summer Sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J.Dot Summer Sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
2: Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands, Arts Centre and Lockworth Cinema, Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus, meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio Partners, Leica Radio Network.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4.

0: visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल protected.
4: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
5: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
6: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
7: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
8: LemFi means quicker and safe way to send money.
9: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
8: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
9: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
10: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
11: Punjab, the biggest tunes.

0: गुड आफ्टरनून. दो गाने आपने बैक टू बैक सुने ऑन लाइक अ रेडियो नेटवर्क के जरिए. जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, चाहे आप लंदन और आसपास के इलाकों में हैं और लाइक अ गोल्ड सुन रहे हैं, या फिर लाइक अ रेडियो मैनचेस्टर सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में सुना जा रहा है ये प्रोग्राम, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आप ही की अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल. होप यू वेल, हमेशा खुश और खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी. इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, गेट वेल सून. इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू इंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए ये गाने चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए. प्रोग्राम के पहले दो गाने मैंने चुने और इस उम्मीद पर कि आपको ज़रूर पसंद भी आए होंगे. दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे. क्या सोचते हैं, इनमें कुछ कॉमन था? क्या कॉमन था? कोई वर्ड कॉमन था या कुछ और? वर्ड भी कॉमन था और कुछ और भी था. मैं ही बताती हूँ आपको. टुडे वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ बॉलीवुड्स एवरग्रीन रोमांटिक स्टार कुमार गौरव, बॉर्न ऑन 11th July 1956 इन लखनऊ, बॉर्न ऑन एस मनोज तुली. जब ये पैदा हुई, इनको नाम दिया गया था मनोज तुली का. ही इज़ द सन ऑफ लेजेंडरी लेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी एंड मेड अ सेंसेशनल डेब्यू विद द ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी इन 1981, जिसका गीत आपने सुना आशा जी की आवाज़ में. और वैसे ही इसमें और भी बहुत से अच्छे अच्छे गाने थे, लेकिन मैंने चुना इस गीत को. द फिल्म बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ इट्स टाइम एंड इट्स अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स. कौन से गाने थे इसके, याद आए आपको? याद आ रही है, देखो मैंने देखा है, एक सपना, दे आर स्टिल लव बाय ऑडियंस. Although many of his later films didn't match the phenomenal success of Love Story, he delivered memorable performances in films like Naam alongside Sanjay Dutt. Though Sanjay Dutt ka chota role tha, lekin somehow Sanjay Dutt ko is film se zyada fame mili aur unki gaadi aage nikal gayi aur inka kaam bhi zyada tha aur inka role bhi bahut khoobsurat and acting bhi bahut achhi thi, par को नाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. एंड लेटर ही अपियर्ड इन कांटे, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2002. कुमार गौरव इज मैरिड टू नम्रता दत्त. नम्रता दत्त आप जानते हैं, सुनील दत्त जी की बेटी, एंड मेकिंग हिम पार्ट ऑफ वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म फैमिलीज. आफ्टर स्टेपिंग अवे फ्रॉम एक्टिंग, इन्होंने अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी या कुछ और. So, even today, Kumar Gaurav is fondly remembered for his charming screen presence, youthful romance and the timeless songs from Love Story, which continue to delight music lovers across generations. अब बाकी के तो जो गाने हैं इस सावर के, उनमें शायद ही कोई और गाना कुमार गौरव का मैं शामिल कर पाऊँ, क्योंकि इन दोनों गीतों में एक वर्ड भी कॉमन था. कौन सा वर्ड कॉमन था जिस पर बेस थे दोनों गाने, अगर आपको पता चल चुका है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इत्तला कर सकते हैं. वैसे आपके मैसेजेस मिलना शुरू हो चुके हैं, थैंक यू एवर सो मच. बड़े प्यार से आप मुझे लिखकर भेजते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं. इसी तरह से आपका और हमारा प्यार बना रहे, सरिता तो बस यही चाहती है. चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas today. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: भी आज तो क्वार्टर फाइनल से नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच मैच होगा और ये मैच शुरू होगा रात को 10 बजे. Don't forget you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
3: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99. Per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollots Hill, Leicester, LE54UN. Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Hero kadi wapas nahi aaye.
6: Did you hear that?
7: 1995, Punjab. Jahan ek taraf police force militancy hatane mein lagi hui thi.
6: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
8: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
6: सतलुज on Hindi Z5.
9: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जैसी.
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
12: The madness is back. Dhamal 4.
13: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
12: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
14: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
12: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
15: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
1: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Come on, England. Roar it. Score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कहने माशाल्लाह। कितना प्यारा गाना था। हाँ, जानते हैं किस फिल्म से था? वेल, टाइटल ट्रैक था जी चाहता है। यस, जी चाहता है वाज द नेम ऑफ द फिल्म। 1964 में आई थी ये फिल्म, एंड इस फिल्म में जॉय मुखर्जी एंड राजश्री ने काम किया था। बहुत प्यारी फिल्म थी एंड संगीत भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। गाने तो हमेशा चुन चुन कर लाती है सरिता। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तस्वीर आपकी, आजकल तो तस्वीरें इतनी कॉमन हो गई है ना, हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, यानी हर किसी के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में कैमरा है, और कैमरे से जब जी चाहा तो किसी की भी तस्वीर खींच ली, और अगर किसी की तस्वीर नहीं तो अपनी लोग सेल्फीज़ बना लेते हैं। तो आप भी क्या सेल्फी क्वीन हैं? मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी सेल्फीज़ खींचती है। मैं कभी भी अच्छी सेल्फी ना खींच सकती हूँ और ना ही मेरी कभी सेल्फी अच्छी आती है। आर यू गुड एट टेकिंग सेल्फीज? अगर हाँ तो बड़ी इत्मीनान से एक सेल्फी लीजिए और मुझे जरा व्हाट्सएप कर दे, मैं आपकी चेहरा तो देखूं कि आपके चेहरे पर इस वक्त कैसी मुस्कान है। तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी सेल्फी लीजिए, तस्वीर खींचिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर बताने का तो मुझे कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं और रटे हुए नंबर आपको, और आपके मैसेजेस बराबर मुझ तक पहुंच ही जा रहे हैं। तो जल्दी से एक सेल्फी खींचिए और मुझे बता भेज दीजिएगा। बाय द वे, ये गाना जो जी चाहता है फिल्म से आपने सुना, ये गीत आप तक पहुंचाया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Like a Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: ब्यूटीफुल गाना था फिल्म गाइड से, एस टी बर्मन साहब का संगीत, और क्या फिल्म थी। आपने देखी थी फिल्म गाइड? मैंने देखी थी और मुझे देवानंद इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे थे, एंड वहीदा रहमान के सारे गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे जो गाना बहुत पसंद है वो था पी हथों से नैना लागे रे, और उसमें जो क्लासिकल बीट आता है वो और भी ज़्यादा शानदार लगता है। आपको गाइड का कौन सा गाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो मुझे आप बता सकते हैं। वैसे इस फिल्म में एक एस टी बर्मन साहब ने भी गीत गाया था, अल्लाह मेघ थे, वो भी गाना बहुत खूबसूरत था। सो बताइएगा मुझे कौन सा अच्छा लगता है आपको गाना, गाता रहे मेरा दिल, दिन ढल जाए रात ना जाए, सारे गाने बहुत अच्छे थे। तो मुझे इंतज़ार रहती है आपके मैसेजेस की। सेल्फीज आ रही हैं और जिन्होंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सेल्फीज भेजी है उनके नाम आ रहा है ये आज का अगला गाना। ज़रा सुनिए और आपकी तारीफ में मैं नहीं कुछ और कोई कहने वाला है क्या। वैसे गीत जो है वो मुकेश जी एंड कंचन जी की आवाज़ में, ज़रा सोचिए सोचिए कौन सा गीत हो सकता है।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: कितना अच्छा लगता है ना कोई कहे कि तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारी हो। क्या अल्फाज हैं, क्या बात है इन गीतों की। और इस गीत का संगीत किसने दिया था जानती हैं? ये भी संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। मैं सोच समझ के नहीं ये गीत चुन रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत आ रहा है, क्योंकि उनका संगीत है ही इतना खूबसूरत। फिरोज खान साहब ने बनाई थी ये फिल्म, डायरेक्ट भी की थी, इसमें उनके साथ ही हीरोइन हेमा मालिनी, रेखा भी थी एंड और भी बहुत सारे आर्टिस्ट। प्यारी फिल्म थी, सारे गाने भी अच्छे थे और स्पेशली ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सो आपने पसंद किया। ये जिन्होंने भी मुझे सेल्फीज भेजी हैं ये उन सब के नाम गया। अब आप कहेंगे कि जिन आदमियों ने अपनी सेल्फीज भेजी है वो भाई वो बदल लेना आवाज़, वो जो मुकेश जी की आवाज़ में था वो कंचन जी ले लें, कंचन जी वाला मुकेश जी। सो समझ लें कि ये आपके नाम भी था गाना। सो अगर आपने अभी तक सेल्फी नहीं भेजी है तो जल्दी से भेजिएगा। सोहिनी जी आपने एक्चुअली मुझे भेजा है मैसेज, सोहिनी रावल जी ने, और लिखा है कि सरिता मुझे पता नहीं चल रहा है कि स्टूडियो के नंबर पर किस तरह से व्हाट्सएप भेजा जाए। तो आपको व्हाट्सएप नंबर तो मालूम ही है और हम इतनी दफ़ा व्हाट्सएप नंबर देते भी हैं आपको, बस जैसे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा मेरे पर्सनल पर वैसे ही वहाँ पर भी मैसेज भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपसे मैसेज रिसीव करके। और जिनके मैसेजेस मुझ तक पहुँच चुके हैं थैंक यू एवर सो मच, इसी तरह से मैसेजेस भेजते रहिए।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Like a radio.
2: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
4: Lester Mela is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist
4: H. Dami. Bringing the hits, the energy and those proper live stage vibes.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
6: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
7: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
6: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
10: miss your favourite show on Leica Radio Midlands, you can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
11: Namaskar, Ravi Sharma Bros aapki seva mein hazir hota hu. Monday to Friday judiyega mere saath 10 se 1 baje ke beech, Monday to Friday, Manoranjan with Ravi Sharma.

0: बड़ी प्यारी सी शिकायत थी इनकी, मैं क्या करूं राम पर क्या को का बना दिया था इन्होंने, पर कोई बात नहीं, गाना तो आप समझते ही हैं क्या था क्या हो गया। एनीवे आपके मैसेजेस बराबर मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और सेल्फीज भी भेजते रहिएगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: भी आज आपको एक पाउंड के बदले मिलेंगे 127 रुपीस एंड 98 पैसेस, पाकिस्तानी रुपीस 372.55, श्रीलंकन रुपीस 449.75, बांग्लादेशी टका 165.19, अफगानिस 87.43, केनियन शिलिंग्स 173.17, US डॉलर्स 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: गोल्ड का रेट है इस वक्त मार्केट में 98 pounds and 82 pence पर ग्राम।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. This is Leica.

0: है लाइका रेडियो।
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 45,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th ऑफ सितंबर, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM. टिकट्स बुक करें demontforthall.co.uk
3: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।

0: मोहम्मद अजीज एंड एस जानकी जी की आवाजें आपने सुनी और सच कह रहे हैं कि जाते जाते जाते मुझे तू रुला गई। एस जानकी प्लेबैक सिंगर, इन्हें आप बहुत से गीतों में इनकी आवाज़ को सुन पाए हैं, सुने और इन गीतों को आपने हमेशा पसंद भी किया। आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गई हैं और हमारी तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि, परिवार को हम दुख सहने की शक्ति देते हैं, मिले ऐसा कहूँगी मैं, और उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर एस जानकी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। शी इज़ रिपोर्टेडली डाइड एट अपोलो हॉस्पिटल इन मैसूर एंड आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स। एस जानकी अफेक्शनेटली नोन एज The Nightingale of South India enjoyed an extraordinary career spanning more than 6 decades, and she recorded thousands of songs in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi, and several other Indian languages, and making her one of the most known prolific playback singers in India, Indian cinema. Some highlights of her remarkable career is आप सभी को मालूम होगा कि उन्हें 4 दफ़ा नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। शी रिसीव्ड मोर देन 30 स्टेट फिल्म अवार्ड अक्रॉस साउथ इंडिया, वॉज रिनाउंड फॉर हर वर्सिटैलिटी, एफर्टलेसली सिंगिंग एंड क्लासिकल एंड ऑल्सो डिवोशनल फोक एंड रोमांटिक सॉन्ग्स, एंड उन्होंने बच्चों के भी बहुत गीत गाए और बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स के कंपोजर्स के साथ उन्होंने काम किया, लाइक MS विश्वनाथन, इलियाराजा, KV महादेवन एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड मैनी मैनी मैनी मोर। इन 2013 शी डिक्लाइन द पद्म भूषण, सेइंग द ऑनर हैड कम टू लेट इन हर करियर। And her passing marks the end of an era in Indian playback singing, and tributes are pouring from musicians, actors, fans across country, जहाँ दूर दूर से उनके लिए messages आ रहे हैं। सो उनकी यादगार गाने तो ज़्यादा साउथ के हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने म्यूज़िक लवर्स को बहुत से मेमोरेबल गाने दिए। एक गीत आपने अभी अभी सुना, मोहम्मद अजीज़ के साथ गाया था। सम ऑफ हर वेल नोन बॉलीवुड नंबर्स आर लाइक यार बिना चैन कहाँ रे, पप्पी लहरी के साथ साहिब फिल्म में गाया था वो गीत, एंड सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, मर्द का गाना, एंड दिल में हो तुम, सत्यमेव जयते का गीत। एंड जब मैं सत्यमेव जयते का वो गीत जब भी सुनती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है वो गीत आशा भोसले गा रही है या एस जानकी। सो आज भी मुझे यही लग रहा था कि ये एस जानकी की आवाज़ है या आशा भोसले की। यू कैन कन्फर्म, वैसे मैंने 3-4 दफ़ा चेक किया और वो गीत एस जानकी जी ने ही गाया और बहुत खूबसूरत गाया। आई एम गोइंग टू प्ले इट इन अ शॉर्ट वाइल, तो आप सुनिएगा। ऐसे बहुत से मीठे मीठे गीत उन्होंने हमें दिए हैं, ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि दूसरा गीत जो फर्स्ट सॉन्ग था इस आवर का, वो मैंने चुना था फिल्म मृत्युदंड से। मृत्युदंड फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1997। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित थी, शबाना आज़मी थे एंड अयूब खान थे। प्रकाश झा साहब ने ये फिल्म बनाई थी। आनंद मिलिंद का था संगीत। उम्मीद करती हूँ वो भी गीत आपने पसंद किया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Where your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas today. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: आज रात को मैच होने वाला है, यूके टाइम 10 बजे शुरू होगा, नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में बहुत बड़ा मैच है, ये क्वार्टर फाइनल्स का मैच है, तो जो फुटबॉल प्रेमी है दे विल बी ग्लूड टू द टेलीविजन। और बता दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
8: After the smash hit running 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting ditzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
9: Radio partner, Leica Radio.

0: यह भी प्ले हुआ। इसके अलावा मैंने अर्लियर ऑन मोहम्मद अजीज जी के साथ उनका एक ड्यूएट आप तक पहुंचाया, जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म, कौन सी फिल्म का गाना था वो, दैट वाज आल्सो सत्यमेव जयते का गाना था, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर पसंद किया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बहुत से साथी कह रहे हैं कि इनके और भी गीत शामिल कर दीजिएगा, सो आई विल डेफिनेटली एक और गीत ट्राई करूँगी कि मैं प्रोग्राम में शामिल कर पाऊँ। और अब अर्जुन जी, भारती जी, संध्या जी, हरप्रीत जी, हरीश रूटा जी, वत्सला जी, सभी के मैसेजेस हैं मेरे सामने। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखकर आपने भेजे हैं, जिनके लिए तहे दिल से आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। सुभाष परमार जी कहते हैं गीत सुनते हैं तो पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू सो मच आपके प्यार का। महेंद्र बजारिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश टकियार जी, थैंक यू। तोची जी, निर्मलन कीरत जी, भारती डी जी, उल्लास इन टोरंटो, जगतार जी इन वैंकूवर, एंड सहर, हना, मृदु जी, इंतशा, मिसेस शेख, तोची जी एंड तोशी, अमृता जी आप भी सुन रही हैं, सोनी रावल जी थैंक यू, हसमती जी आपका भी, हंसा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड भरत गंगा राम जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: जी हाँ, एस जानकी जी वाला गाया वो गीत डेरी वैली वालों ने ही आप तक पहुंचाया था। और अब एक और बहुत प्यारा सा गीत आ रहा है, और ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज हुई थी। कौन से ईयर में याद कीजिए, आप याद कीजिए और मुझे बताइए।
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स, रीता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो।

0: भाई प्यार का मौसम का जब गीत सुना हमारी हरप्रीत ने तो कहती हैं कि लिखती हैं कि शशि कपूर इतने हैंडसम इतने सुंदर लग रहे थे उस गीत में और उस फिल्म में भी. अच्छा याद रखती हैं बहुत कुछ अब. और आपने कहा है कि यहाँ तो अभी भी हम कार्डिगन पहन रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी हमें भी भेज दीजिए. ज़रूर ज़रूर दिल के मौसम को अच्छा रखिए, अपने आप गर्मी आप तक पहुँचती रहेगी. और क्रिकेट का मैच भी तो चल रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया के बीच. जो लेडीज खेल रही हैं उनके बारे में बता दें, इंग्लैंड ने बनाए 257 रन्स और 3 खिलाड़ी आउट हो गए और इंडिया 110 रन्स बना चुके हैं और उनके भी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इन 10.1 ओवर्स में. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. इसी तरह से सुनते रहिएगा, जलाल आगा जी को भी हम याद करेंगे इन द नेक्स्ट आवर एंड उमा देवी यानी टुनटुन जी के भी एक आध गाना जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगी. और अब प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचा देगा न्यूज तक. न्यूज के उस पार ही सरिता अब अपनी जुबान खोलेगी. वैसे आप सुनते रहेंगे गीत भी और संदेश भी, सुनते रहिए.
1: This is Leica Radio.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Heera Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.
4: The Janan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
5: Leicester Miller is back.
6: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
5: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
6: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
5: The voice that defined a complete era. Ah, the songs that touched millions. She's coming to London soon.
7: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
9: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
10: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ द शो। अगर अभी अभी सुनना शुरू किया है तो पिछले दो घंटे आपने मिस कर दिए, तो मैं चाहूँगी कि हमेशा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा ही साथ दिया करें। अगर आंखें रखनी है टेलीविजन पर, देखना है तो देख सकते हैं, घर के कोई काम करने तो कर सकते हैं, लेकिन कान मेरी तरफ होने चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करती रहूँगी। अब ये दो गाने जो आपने सुने वो रेयर हैं, मैंने बहुत देर बाद प्ले किए होंगे। क्या आपको याद है कि लास्ट कब सुने थे? सो जो पहला गीत था वो था फिल्म दुलारा से, एंड दुलारा तो इतनी ज़्यादा पुरानी फिल्म नहीं है, दुलारा 1994 की फिल्म है जिसे विमल कुमार ने बनाया था, डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, एंड संगीत था निखिल विनय का, एंड गीत में आवाज़ें आपने सुनी कुमार सानू एंड अलका याग्निक की। इस फिल्म में किस किस ने काम किया था? गोविंदा थे एंड करिश्मा कपूर थे। लेकिन जो दूसरा गीत आपने सुना वो रेयर हिट था, इंसाफ की मंजिल था इस फिल्म का नाम, और इसे बराज भूषण ने बनाया था। इस फिल्म में शेखर सुमन थे एंड दिलीप सिन्हा थे, एंड गाने इसके कंपोज किए थे चित्रगुप्त जी ने। सो मुझे उम्मीद है कि ये गीत भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत कम बजते हैं हमारे यहाँ से, लेकिन मैंने सुनाया और आपको अच्छा भी लगा होगा। इसमें लीना दार भी थी एंड लीना दास भी थी एंड पूनम देश गुप्ता भी थे। एनीवे अभी अभी मुझे मैसेज मिला है, और ये मैसेज जयश्री जी ने लिखकर भेजा है, और लिखती हैं, बहुत अरसे के बाद आपका मैसेज मिला है, कि आप मुझे भूल गए थे क्या? बहुत दिनों बाद मैसेज लिखा। लिखती हैं, सरिता जी, टुडे माय हस्बैंड सुभाष परमार जीज बर्थडे, प्लीज़ कैन यू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे जयश्री परमार एंड फैमिली, एंड प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर रफ़ी साहब का कोई भी गीत सुना दीजिए। तो हो सकता है मेरी प्लेलिस्ट में और भी गाना हो रफ़ी साहब का, तो मैं ज़रूर उन्हीं के नाम करती हूँ। सुभाष परमार जी, आपको हमारी तरफ से, हमारे सारे लाइका के परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए, आप खुशियाँ मनाते रहें, एंड आपके साथ साथ अगर कोई भी जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, या कोई और खुशी का मौका है, तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में। आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 20 paisas. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app ke zariye. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: चलिए भी रात को 10 बजे से पहले पहले अपने सारे काम खत्म कर लीजिएगा, ताकि आप आराम से बैठ के मैच देख सके। नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला है, एंड दैट इज द क्वार्टर फाइनल्स, सो ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही एक मैसेज है रैक लॉ वालों का, और वो ये मैसेज है कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद देयर स्पॉन्सर, हमारे जो स्पॉन्सर हैं रैक लॉ, इफ़ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: Sister. Stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Cell, Leicester, LE5 4UN.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
6: इन रियल एस्टेट। Location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Hero kadi wapas nahi aaye.
8: Did you hear that?
9: 1995 mein Punjab, jahan ek taraf police force militancy hatane mein lagi hui thi, wahin dusri taraf kuch police wale is mauke ka pura fayda utha rahe the.
10: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
11: Main is desh ki Supreme Court aur Punjab sarkar se seedhe poochti hu. Kahan hai Jaswant Singh?
10: Satluj on Hindi Z5.
12: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी।
13: आपके सामने एक रेड बटन है,
14: दबा दिया।
13: नहीं दबाना था।
15: The madness is back, धमाल 4।
16: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
15: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
17: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
15: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
18: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आके कैसे आ जाता।
19: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi तड़का is total risk, है ना?
20: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 मजेदार flavors.
19: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Food Potato
1: Chips. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7. And with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: शकील साहब ने लिखा था, शकील बदायनी जी ने इस गीत को फिल्म घराना के लिए, एंड इस फिल्म के इस गीत के लिए इन 1962 ही वन फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड। क्या बात है, कितना प्यारा गाना, और उम्मीद करती हूँ मेरी चॉइस आपको पसंद आई। वैसे आपके मैसेजेस तो यही बता रहे हैं कि हर गीत के बाद ये लिखना कि क्या बात है सरिता, क्या कितना अच्छा लगता है जब कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में कोई भी मेहनत करता, किसी भी तरह की मेहनत करता है और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और शकील साहब के लिखे हुए बहुत से यादगार गीत हैं, साहबीबी और ग़ुलाम के, इसके अलावा चौथवीं का चांद के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला था। एंड देन 20 साल बाद का याद है वो गीत, कहीं दीप चले कहीं दिल। जब मैं यंग थी तो ये गाना बहुत गाया करती थी, लेकिन अब नहीं। और मेरी सिस्टर भी हमेशा कहती थी कि यही गाना तुझे आता अच्छा लगता है। यहाँ सजा का गाना जो था, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए, वो गीत भी मेरे दिल के बहुत करीब है। सुभाष जी, आपने कहा था रफ़ी साहब का कोई गीत आपके नाम कर दिया जाए, आपका बर्थडे, तो ये गीत मैंने आपके नाम किया।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और इस गीत के जरिए हम याद कर रहे हैं जलाल आगा जी को। वैसे तो उन्हें याद किया जाता है, बहुत याद किया जाता है महबूबा महबूबा वाले गाने के साथ, लेकिन आज ही प्ले हुआ ये गाना सुबह।

और इसी गीत के साथ हमने याद किया कि नेन जलाल आगा साहब को वॉज अ टैलेंटेड बॉलीवुड कैरेक्टर एक्टर बेस्ट नोन फॉर हिज लाइवली स्क्रीन प्रेजेंस इन 1970s एंड 80s. ही वॉज बॉर्न ऑन 11th जुलाई

0: काम किया, लाइक मंजली दीदी 1966, बासु चैटर्जी की सारा आकाश 1969, एंड इसके हवा फिल्म थी एक, उसमें भी थे, कर्ज में भी थे, ऋषि कपूर वाली कर्ज में इन 1980, जुनून इन 1979 एंड गमन इन 1978, बहुत सी फिल्मों में काम किया। थोड़ी सी बेवफाई, घर घर की कहानी, बहुत प्यारी फिल्म थी, और इसी फिल्म से मैंने चुना है आज के प्रोग्राम का अगला गीत। लेकिन जो गीत आपने अभी अभी सुना वो आप तक पहुँचाया।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Leica Radio. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

क्या बात है, ऐसे ऐसे गीत आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं सुनने को मिलते हैं। और थैंक यू आपका भी जो मुझे हमेशा इनकरेज करते रहते हैं और हर गीत के बाद लिखते रहते हैं कि कितने पसंद आ रहे हैं आपको ये सारे के सारे गाने। थैंक यू, सुनते रहिएगा। राइट भाई, साउथ होल ट्रेवल्स वालों का मैसेज मैं जल्दी से आप तक आपके साथ शेयर कर लूँ। साउथ होल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call South Hall Travel for the most competitive

0: भी आज ही के दिन उमा देवी जी का भी बर्थ हुआ था, जुलाई द 11th 1923 में. एंड शी वॉज अपने समय की बहुत बड़ी सिंगर भी रही हैं और कॉमेडियन भी रही हैं. एंड इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया एज टुनटुन एज वेल. और टुनटुन को कौन नहीं जानता है, अनोखी अदा और नाटक एक रंग में सब रंग, बहुत सारे इनके गाने मशहूर भी हुए. लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, मेरे बाद ही आ रहे हैं ना विंटेज गोल्ड डे के सैंडी शाह, तो वो पुराने पुराने गीत आपको सुनवाते रहते हैं, ज़रूर सुनते रहिएगा. और अब ये गीत किसने आप तक पहुँचाए ये जान लें.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. This is Leica Radio across the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees. Kitne? 127.94. Pakistani rupees 372.43. Sri Lankan rupees 449.56. Bangladeshi taka 165.10. Afghanis 88.14. And US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's 98.82 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
3: मेरी महबूब.

0: भाई मेरी मर्जी नहीं है जाने की, लेकिन जाने का वक्त है तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर जाए ना आने वाला, वैसे भी प्यार समझ ही नहीं आता है, इसलिए जो आता है उसको जाना होता है। और मेरे बाद बिल्कुल तैयार है सैंडी शाह आपका साथ निभाने के लिए, और वो आपका साथ देंगे टिल 10 o'clock। 10 बजे हमारी ओवरनाइट सर्विस शुरू होती है, गोल्ड नाइट्स जिसे हम कहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स होते हैं। एंड देन वीकेंड पे सभी प्रेजेंटर्स आते हैं, बारी बारी अपना काम करते हैं। लाइक सुबह दीप राजा आ जाएंगे, उनके बाद रितु शर्मा आती है, फिर अनुराग आते हैं, फिर सरिता की बारी आ जाएगी, और मेरे बाद फिर सैंडी शाह आएंगे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर। और मेरे जाने के बाद अभी कौन आएंगे? वेल, सैंडी शाह होंगे यहाँ, एंड देन नेक्स्ट अंकुर विल बी इन मैनचेस्टर। तो अपने लोकल प्रेजेंटर्स को भी, आप वहाँ के प्रेजेंटर्स को भी सुन पाते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से अब सरिता आपसे विदा लेने जा रही है, कल फिर मिलने का वादा है अगर जिंदगी ने साथ दिया। जिन मेरे साथियों ने पिछले 3 घंटे से बाकायदा मेरा साथ दिया है, सुनते रहे हैं, अपने मैसेजेस भेजते रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये भी कह दूँ कि आपने जो सेल्फीज भेजी थी, हाँ, वो भी उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। समर रियली रियली फनी, बहुत मौसम का पता चल रहा था कि आप मौसम को कितना इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हारप्रीत तो हमारी लिखती हैं कि भाई थोड़ा सा गर्मी हमें भी भेज दो वैंकूवर में, तो ज़रूर भेज रही हूँ मैं आपको, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त, कल फिर मिलने का वादा है। इसी तरह से सुनते रहिए, हमेशा साथ निभाते रहिएगा। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि आप हमारे आसपास हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग।
1: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: आपके सामने एक रेड बटन है,
9: दबा दिया,
8: नहीं दबाना था।
10: The madness is back, धमाल 4.
11: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
10: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
12: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
10: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
13: पता नहीं ऐसे dangerous situations में मैं automatically आके कैसे आ जाता।
9: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday, the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
15: Are you listening? Leica Radio is now available across Coventry on DAB.

0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: The Janaan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janaan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janaan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
2: के सामने एक रेड बटन है,
3: दबा दिया,
2: नहीं दबाना था।
4: The madness is back, धमाल 4।
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
4: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
4: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आके कैसे आ जाता।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Hero kadi wapas nahi aaye.
4: Did you hear that?
5: 1995 Punjab, jahan ek taraf police force militancy hatane mein lagi hui thi.
4: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
6: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
4: सतलुज on Hindi Z5.
7: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जैसी.

0: Breaker Radio. क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
3: The madness is back, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
3: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
7: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
9: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
10: Abhi call kijiye 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
9: Pooja Sweets and Savories.
11: Bollywood romantic hits throughout the night.

0: ये है लाइका रेडियो। लाइका
1: रेडियो। आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना
2: था। द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
3: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
2: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
4: लौड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
2: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
5: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
8: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरू से मंगवाओ। कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.